ये बम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले।

गुलफाम है, सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर

को बोले बटाटा, यहाँ नमस्ते को कहते हैं टाटा, यहाँ अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा, ये जिसको बुलाएं करें

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।

ये संसार नश्वर है, जीवन के सारे सुख धन जमीन जायदाद सभी नश्वर हैं। इतना ही नहीं, ये मानव देह भी नश्वर है। अज्ञानवश हम इन्हीं में सुखों को ढूंढते रहते हैं। सच्चा सुख ईश्वर प्रेम में है और सत्कर्मों में है, जो नश्वर नहीं है। क्यों ना इस जीवन को सत्कर्मों के द्वारा सफल बनाएं।

एक बार एक सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा पड़ जाता है, वो उदास रहने लगते हैं। धर्म पत्नी कहती है कि स्वामी, ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, मेरा कहना मानो और आप भोले भंडारी की कांवड़ लाकर पावन गंगा का जल उन पर चढ़ाओ और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सेठ जी अपनी धर्म पत्नी की बात मानकर पैदल चलकर नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं और हरिद्वार से बम बम की जयकार लगाते हैं, कांवर लेकर शिव का नाम जपते हुए महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो भोले बाबा उनको दर्शन देकर उनके सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये भजन।

फिल्म तकदीर का गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज। मुझे तुम उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमेशा देखें वेबसाइट पर ujala.nl। अगला गीत जो हम तैयार रखे हैं सुनाने के लिए वो होंगे उदित नारायण जी की आवाज में।

अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म डर से निकाला हुआ, उजाला रेडियो, फिल्म आशिकी का गीत आप सुनिए।

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: दोस्तों, आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूँ, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायक टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने। बहुत शुक्रिया।

पूर राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे हम डरते थे वही बात हो गई। कुमार सानू एंड अलका जी, फिल्म का नाम विजय पट्ठा एंड उजाला रेडियो। तो जाने है तो मोई लगे है तो दान एक और गीत, हाँ फिर कुमार सानू जी की आवाज में होंगे।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है डीएबी प्लस तो घर में तोड़ो तुम्हें तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
4: पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति।

0: अरे अरे अरे अरे सुन सुन सुन सुन वाक्य कर हाँ जेरी ब्राजा फेस्ट यस फेस 1 इज volledig uitverkocht sold out haha हम बोलत रहली तो से तो हैव यू नो गेन टिकट्स दन इज दिस योर चांस ऑन द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फेस 2 मोय सीजन इन फेस 2 टू स्कोरन वाक्य नीट टू लॉन्ग वंट इन द फॉलोइंग फेस गान द टिकट प्राइसेस ओमहोग टू जल्दी कर मौसी चली घूमे चली ब्राजा फेस हां 100 चली ब्राजा फेस्ट बेस्टेल नू फिया www.brazafest.nl
1: Raad Odin. Subha Odin Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.

और कुछ, हाँ कुछ याद आने लगा, कुछ बात जाने लगा, तो फिर इसमें दिल क्या करे, फिल्म का नाम भी दिल क्या करे, उदित नारायण और अलका याग्निक से आप गीत को सुने, और इन्हीं दोनों से एक और गीत, बहुत ही सुंदर गीत।

चांद छुपा बादल में, उदित नारायण और अलका जी से। आप सुने फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम।

आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

मून संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये जलवा फैशन का है, ये जलवा द फिल्म फैशन मेट इन द होफ्ट रोल डिस्टेंस प्रियंका चोपड़ा. ये हुआ तुम हीर बाय उजाला रेडियो एक से एक मोई मोई गाना, खूबसूरत गाना, हंगामा गाना, तुझदोरो को बेचे लव गाना. सो डू वी दैट हियर बाय उजाला. दिस मेरा और आपके साथ, और वो भी अमित जयराम के साथ हियर बाय उजाला.

ओ मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रहे हैं, ओ मेरी जान चली न जाए। जी हाँ, आई एम सर्चिंग फॉर योर लव। हिलक धमक गाना, हिलक फील गुड गाना ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। Het is genieten geblazen met ik ze ik gevarieerde Ghana. Ja, dat was de stem van Meatbro, Junita Gandhi en Nakash Aziz uit de film Dream Girl. Organa Kanamra Hadilka Telefoon. Oberte, je programma Groep Zuret Gietke staat. Isbaar film Shanghai uit het jaar 2012. Beautiful Ghana, rustige Ghana. Organa Kanamra Dua. MUZIEK

एक हसीन मजा है ये, मजा है या ससा है ये, क्या कहना, ब्यूटीफुल गाना। फिल्म का नाम है दिल बेचारा और गाना का नाम है तारे गिन। याद इस टाइम फॉन मोहित चौहान सामने में श्रिया घोषाल इन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। यू होट से हीरो उजाला रेडियो, उजाला रेडियो है सुनो लो, इस मेरा और आपके साथ और वो भी अमित जयराम के साथ। दिस टाइम फॉन नेहा कक्कर इन दिस हेलक सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना।

तुझसे है दिन शुरू, तुझसे ही रात है, मिले ना किताब में जो तुझ में वो बात है, हीर ये नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया। हेलक गाना एक से एक मोई मोई गाना हीर बाय द वन एंड ओनली। Dit is de stem van niemand minder dan Meat Bro, Neha Bhasin en Deep Money uit de film Race 3. Met in de hoofdrol niemand minder dan Salman Khan en Jacqueline Fernandez. Geniet lekker van de heerlijke Ghana. Isbaar film Strise uit het jaar 2018. De stem van Sachin Jigar samen met Divya Kumar en Ashta Gill.

आ गया देखो ना आ गया, आओ कभी हवेली पे। फिल्म का नाम है स्त्री, आई द जार 2018, स्टेम फ्रॉम बादशाह, निकिता गांधी एंड सचिन जिगर, और गाना का नाम रहा आओ कभी हवेली पे। हेलक गाना ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो, यू हॉर्ड से वंदाग en niet alleen vandaag. Uchala Radio is 24/7, 24 uur per dag en 7 dagen per week met de allerbeste hits, de allerbeste Ghana. Ik zeg groep door het Ghana, Hangama Ghana, Orvobi Love Ghana Apkelier.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een ongeluk op de A8 in de regio Noord-Holland was het vastgelopen op de A10. Die file is nu oplossende, maar op de A5 is het nog meer vastgelopen vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Een uur vertraging bij de aansluiting met de A10. Rij via de A4 richting Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

सा हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को

आंखों में शराबी हो गई, या द स्टेम फ्रॉम तुलसी कुमार एंड बादशाह ऑन द वोकल्स हियर बाय उजाला रेडियो. या गाने का नाम है पानी पानी एंड मैं देसी गाना ओपन में दिट उर्चे. या इट इज वेयर एन उर्चे ओम लेकर टू गेनीटेन एंड ओंस्पानन टू सेन. मैं हूँ अमित जयराम एंड वेयर यू ओक बेंट व्हाट यू ओक अन डूइंग बेंट सॉर्ग फॉर दैट ओक दिट मोमेंट एंड देसी डग अनफॉरगेटेबल इज. Op de playlist de stem van Aziz Kaur samen met Gurnazar uit de film Bell Bottom. Ik groep Suret bij Misal Gana. Organa kanam he Marjawa.

0: स्टिक्टिंग अभियन स्टिक्टिंग स्वदेश और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन औखुस्त दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो। स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

और ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इस गीत के साथ आपको स्वागत किया जा रहा है इस हिस्सा का प्रोग्राम में। और गीत आप सुने, फिल्म का नाम झुक गया आसमां।

कहने को बहुत कुछ था मगर कह नहीं पाए, ऐसी आत्मा की आवाज में गीता प्रोग्राम में सुने।

खोया खोया जान, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म काला बाजार के गीत आप सुने और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा देखें हम लोगों के वेबसाइट पर, और वो है www.ujala.nl।

और गीत अभी आप जो सुने फिल्म पतिता से निकाले गए। सुनने वालों अब एक गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

अगर किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना मुझे छोड़कर। फिल्म का नाम मेरे हम सफर और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, हम लोगों का तार का नंबर एडमिनिस्ट्रेशन पर है 020 409 0807।

कोई बता दे कि दिल है जहां दर्द होता है क्यों वहां। फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी और ये उजाला रेडियो है। प्रोग्राम को बनाया जा रहा है पुराने गीत।

मुकेश जी की आवाज और फिल्म का नाम अपने हुए पर आए स्टेशन उजाला रेडियो। हाँ तो जाने हैं तो

और हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना रहा। झुमरू फिल्म, हाँ झुमरू फिल्म से और आवाज लता जी की। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि लिखने वाले लिख देते हैं, गाने वाले गा देते हैं और सुनने वाले जो है तो बेहोश हो जाते हैं, है ना।

कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, लता जी की आवाज और फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। उजाला रेडियो है ये।

पर तुम जो हमारे मीत ना होते तो गीत ये मेरे गीत ना होते। मुकेश जी की आवाज और फिल्म आशिक, हाँ फिल्म आशिक से गीत अभी आप सुने।

तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और के चाहोगे तो मुश्किल होगे। मुकेश जी की आवाज, फिल्म दिल ही तो है। इसी फिल्म से एक और गीत हम निकाल रहे हैं, इस बार मन्ना दे जी की आवाज में पेश है।

0: ओ सनम तेरे हो गए हम। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में लता जी एंड मोहम्मद रफी साहब से आप सुने फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।
1: आजा

पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। हेमंत कुमार uit de film Khamoshi, een film uit het jaar 1970. En u luistert naar Ujala Radio. अब लता जी के साथ हेमंत कुमार को आप सुनेंगे।

खिलते हैं गुल यहाँ और मिलके बिछड़ने को फिल्म शर्मिली का गीत किशोर कुमार से आप सुने। कुछ पुराने गीतों हम आपको सुना रहे हैं और अब एक बहुत ही पुराना गीत सुनिए।

सैया दिल में आना रे और आके फिर न जाना रे। आप सुने शमशाद बेगम की आवाज में, बहुत ही पुरानी फिल्म बहार से 1951 में फिल्म बनाई गई है 1959 में। और इस फिल्म में उन दिनों काम किए हैं वैजयंती माला के साथ करण देवन का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे। वैजयंती माला को तो तकरीबन हर एक पहचानते हैं। अगला गीत पेश है और अब मोहम्मद रफी साहब हिस्सा ले रहा है।

खोया चांद और खुला आसमां, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म काला बाजार से आप सुने उजाला रेडियो है। ये है पसंद है ना, मोई लगे है तो। एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब, इस बार आशा जी के साथ।

हूँ और वो दीवाना ढूंढती हूँ। ओहो हसीना जुल्फों वाले, तीसरी मंजिल फिल्म का नाम और गीत के गाने वाले मोहम्मद रफी एंड आशा जी। एंड या किस्ट फोर्ड खरोचते, या किस्ट फोर्ड उजाला रेडियो। अब सुन गीत इन फ्रॉम द टॉप नंबर्स।

लता जी की आवाज और फिल्म पाकीज़ा से आप सुने उजाला रेडियो पर। कुछ पुराने गीत हम आपको सुना रहे हैं ना। काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से गीत सुनिए।

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: जुआर उजाला रेडियो का पैगाम आपके खिदमत में नशर किए जा रहे हैं। हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं शहीद गुलजार की तरफ से। प्रोग्राम को आप सुनते रहना, सुनते ही जाना। लीजिए सिलेक्शन अर्ज है फिल्म महान से, प्यार में दिल पे मार दे गोली, अरे मार ना गोली, ले ले मेरी जान।

0: ना।
1: अरे जाने जहां मर कर भी यहां तेरा पीछा छोड़ू ना। फिल्म महान से किशोर दा और द मैरिड क्वीन आशा जी की आवाज, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं। मिले जुले संगीत में आइए अब एक और सिलेक्शन सुनते हैं सैयद अली साहब की आवाज में, ये नगमा तुम नाराज हो।

अगर मैं पानी बहुत है लेकिन सब पिया नहीं जाता, मेरे दिल में प्यार बहुत है लेकिन सबको दिया नहीं जाता जाता जगजीत सिंह की आवाज में आइए मिलकर सुनते हैं ये शानदार सा गजल। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। आइए मिलकर सुनते हैं जगजीत सिंह को।

आपके दिल बहला रहे हैं और ऐसे में हो जाएगी शोरदा की आवाज में। दोस्ताना नामक फिल्म से सन 1980 का फिल्म दोस्ताना से किशोर दा की आवाज में बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की सड़क पे चली जा रही थी।

यस माय डियर, आपने भी सुने हैं किशोर दा की आवाज में ये सिलेक्शन। मिले जुले संगीत में हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म का नाम साजन की सहेली। इसी फिल्म से जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, वो बेवफा किसी और की साजन की सहेली हो गई। सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, स्टेशन है यू आर

रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते आप डाल करें उजाला रेडियो को सुनिए दो सुनिए 409-08-07 पर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक या तो इन्फो आप स्टार्च उजाला .nl द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी के आवाज में तुम महकती जवान चांदनी हो चलती फिरती कोई रोशनी हो आइए मिलकर सुनते हैं द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश को

द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी की आवाज में कि तुम महकती जवां चांदनी हो, चलती फिरती कोई रोशनी हो. क्यों जी मजा आ रहा है मुझे भी यार. द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता जी की आवाज में कि तुम जब भी याद आओगे.

अरे जाने मन, हम आपको क्या बताए कि तुम जब भी याद आओगे ये दिल भराएगा, ये आंख छलक जाएगी। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर की आवाज आप अभी प्रोग्राम में सुने हैं। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आपके खिदमत में नशर है, और ऐसे में एक और सिलेक्शन हो जाए कि कैसी लग रही हूं मैं, अब हम क्या बताए, हाउ डू आई लुक। फिल्म झूठा सच से आइए मिलकर सुनते हैं कैसी लग रही हूं मैं। द नाइटिंगेल, लता जी और किशोर दा की आवाज़।

Yes, my dear, कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए ना क्या ख्याल है। ख्याल बहुत नेक है। आप उजाला रेडियो को सुनते रहना और सुनते ही जाना।

बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया, बड़ी फुर्सत से मालिक ऐ हंसी तुमको बनाया बनाया। लकी अली की आवाज में आइए अब मिलकर सुनते हैं ओ सनम मोहब्बत की कसम। युवा के सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन, एक मुबारक दिन प्रकट की जा रहे स्टूडियो से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। ओ सनम मोहब्बत की कसम, लकी अली की आवाज़।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net